सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना, लविन शिबला फिल्म से ये गीत था। 1960 रिलीज फिल्म, इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर एहसास है अपने देश अपनी धरती पर गौरव होना, और ये एहसास हम सभी को बिल्कुल होना भी चाहिए दिल से। हमारे भारत की संस्कृति, धरोहर, विरासत और इसके हर मौसम ऋतु पर गर्व है हमें।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना एक ही रास्ता इस फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी रचना। बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, कई सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। उनमें अगर खटास भी भरी हो तो वो भी वो यादें भूल पाना नामुमकिन होता है। इसलिए हर बच्चे का बचपन अच्छी सुंदर यादों से सजा रहे, ये कोशिश हमारी रहे। वो कोई भी बच्चे हो, उन्हें अपनापन दीजिए।

शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। नौशाद की संगीत रचना थी शकील बदायूं ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम दीदार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। मित्रों, भोर काल का समय बहुत ही सकारात्मक समय भी माना जाता है, जब मन मस्तिष्क में सकारात्मकता अधिक रहती है। और वैसे भी यदि हम अपने मन से आत्म विचार हम करें तो एक आम इंसान क्या और राजा क्या, सभी अपना मन बदल सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं अपने मन को।

आशा भोसले मन्ना जी के स्वरों से सजा ये गीत, अनिल बिस्वास का संगीत, भरत व्यास की लिखी रचना, 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम अंगुलीमाल। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल

शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का चौथा युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Commonwealth Games 2026. Let's hear from the president of the Boxing Federation of India, Mr. Ajay Singh.
1: It has been a historic last 2 days, winning 7 golds and 3 silver medals. This is the largest ever number of golds and the best performance of any country ever in the 100-year history of the Commonwealth Games.
2: मुनीश, अब बात करते हैं एथलेटिक्स की। भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में उतरा, जिसमें कुल 32 खिलाड़ी शामिल थे, 22 पुरुष और 10 महिला। भारत ने एथलेटिक्स में अपना अब तक का सबसे शानदार कॉमनवेल्थ गेम्स कैंपेन दर्ज किया, जिसमें एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर कुल रिकॉर्ड 16 मेडल्स हासिल किए। इनमें से 10 मेडल्स एबल बॉडीड इवेंट्स और 6 पैरा इवेंट्स में आए। मेंस जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर के सीजन बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यूटांट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर्स का पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में गुलवीर सिंह ने भारत के लिए सबसे शानदार इंडिविजुअल कैंपेन्स में से एक पेश किया। उन्होंने 10,000 मीटर्स 27:49.78 में पूरा करके सिल्वर जीता और इसके बाद 5,000 मीटर्स में 13:24.95 का समय लेकर ब्रॉन्ज अपने नाम किया। इसके साथ ही वो कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में 2 ट्रैक मेडल्स जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। भारत को जंपिंग इवेंट्स में भी जबरदस्त सफलता मिली। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप में सिल्वर हासिल किया, जबकि मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज हासिल कर भारत का डबल पोडियम पूरा किया। प्रवीण के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो बर्मिंघम 2022 में सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उधर तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीता और इस कठिन 10 इवेंट कॉम्पिटिशन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। सीमा कालीरमना ने

मींस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला। हालांकि कुछ परिणाम गेम से पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर्स के हीट्स में ही बाहर हो गए। अनिमेश कुजूर ने अपना 200 मीटर हीट जीतकर प्रभावित किया, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। तेजस शिरसे गेम से पहले के अपने बेहतरीन फॉर्म को 110 मीटर हर्डल्स में मेडल में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि पारुल चौधरी 3000 मीटर और 5000 मीटर स्टीपल चेज दोनों में पोडियम से बाहर रही। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 3 गोल्ड मेडल्स और 2 यादगार 1-2 फिनिश हासिल हुई। शर्मिला धनकर ने विमेंस F57 शॉटपुट में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। शिल्पा के शायला को ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया। इसके बाद दिलीप महादुगावित ने मेंस T47 100 मीटर में 10.71 सेकेंड्स के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने

0: जुयाल ने सिल्वर हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के इस ऐतिहासिक कैंपेन का बेहद शानदार अंत रहा।
1: Now let's move on to weightlifting. India fielded an 11-player contingent in weightlifting, spearheaded by world champion Mirabai Chanu, who impressed all by lifting 85-kilogram Commonwealth record and a Games record in snatch and a Games record of 105-kilogram in clean and jerk with a total of 190-kilogram, a Games record, winning gold in 48-kilogram category. But it was heartening to see Gyaneshwari Devi clinching the silver in 53-kilogram category with a 199-kilogram national record that she created in Glasgow. Bindya Rani Devi's bronze medal, Harjinder Kaur's 227-kilogram silver medal victory were the highlights as far as the women weightlifters were concerned. Moving on to the men's category, Rishikanta Singh created a games record in snatch when he lifted 121 kilograms and a total of 264 kilograms with 143 in clean and jerk, got a silver for India. Muthupandi Raja got a silver in 65-kilogram category. Ajay Babu got a silver in the 79-kilogram category. And Lovepreet Singh in the 110-kilogram category got a silver. पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का नाम तब रोशन हुआ जब बिहार के झंडू कुमार ने इतिहास रचा। मेंस हेवी वेट में तीसरे स्थान पर आए और भारत को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल दिलाया। ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए झंडू कुमार ने ये साबित तो कर दिया कि शरीर की कमजोरी इरादों की मजबूती के आगे कुछ नहीं।
0: ग्लासगो में भारतीय जूडो दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में कनाडा की हेदी क्वाच को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े गोल्डन स्कोर फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टोप्राक के खिलाफ खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में साउथ अफ्रीका की स्काई को महज 67 सेकेंड्स में इपॉन से हराकर ब्रॉन्ज जीता और भारत का 4 मेडल टैली पूरा किया। भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल्स ग्लासगो को जूडो के इतिहास में एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू एडिशन बनाते हैं।
1: अब बात करते हैं लॉन बोल्स की। 4 इवेंट, 6 एथलीट्स। पुरुषों की जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार 4 जीत के साथ मजबूत शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम टाई ब्रेक हारने के कारण वे मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाए। पुरुषों का सिंगल्स पुतुल सोनोवाल के द्वारा भारत ने खेला। इन्होंने अपने पहले मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर, जो कनाडा के हैं, उनको एक रोमांचक टाई ब्रेक में हराकर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी की थी, मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। यानी लॉन बोल्स इवेंट में इस बार कोई मेडल हासिल नहीं हुआ।
0: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारत की महिला टीम ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया, लेकिन अपने 3 ग्रुप मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत बिना किसी मेडल के वापस लौटा। इसके अलावा स्विमिंग में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
1: Well then, the Commonwealth Games 2026 have come to an end. Australia topped the final medal standings at the Commonwealth Games with 70 gold medals and 170 medals in all. India finished 4th with 13 golds, 17 silvers and 9 bronze medals.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ

के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्ते आरजे मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह
1: नमस्ते इकबाल जी, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का करम है, फजल है। तो
1: जी इकबाल जी, तो
0: उस समय में कल जो जी जी
1: आज का टॉपिक सुनाए सर आप,
0: आपके टॉपिक दोस्ताना पे है ना,
1: आपके
0: दोस्त
1: आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मेमोरेबल
0: बेस्ट फ्रेंड,
1: क्रेजी
0: बेस्ट फ्रेंड
1: इंसिडेंट सर।
0: मेरे बेस्ट फ्रेंड रेडियो के माध्यम से भी बहुत है और बचपन के भी दोस्त बहुत है, मगर रेडियो के
1: अच्छा।
0: माध्यम से जो दोस्त मिले हैं मैं उनकी बात बहुत बताता हूँ। सुल्तान
1: अच्छा।
0: शाही प्रिंस अशोक अन्ना है जो मेरे को जिंदगी में पहली दफा 15 अगस्त का झंडा चढ़ाने का बड़ा शौक था मेरे को बचपन से,
1: अच्छा।
0: और वो मौका उन्होंने हमारे को दिए 2016 में।
1: अच्छा जी।
0: मेरे को 15 अगस्त का झंडा चढ़ाना, 26 जनवरी का झंडा चढ़ाने का ये मौका मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश उन्होंने निकाले। तो मैं इसी तरह से कहता हूँ दोस्ताने में जो आदमी की ख्वाहिश निकालने वाले, अरमान निकालने वाले जो रहते हैं वो बहुत करीब होते हैं, पर इसी तरह से हमारे अशोक अन्ना बहुत काम में आए मेरे।
1: अच्छा।
0: और भी बचपन के दोस्त है मेरे, मीन मुनवर अली साहब, मीन मुनवर अली है, आफ्ताब भाई है, प्रताप भाई है, तो ये दोस्ता जो है ये बचपन से हर वक्त कॉपरेट करते आए, मगर रेडियो के माध्यम से जो मिले मेरे को ये बहुत ही जहन नशीन और बहुत ही अच्छे अच्छे करना है। और
1: अच्छा।
0: ये है
1: थैंक यू इकबाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।

0: Our next caller, Srinivas ji, is on the line. Srinivas ji.
1: Hello.
0: Kaise
1: Very,
0: hai,
1: very,
0: Srinivas
1: very,
0: ji?
1: very good afternoon, madam. Srinivas Rao, Malakpet ma.
0: जी
1: तो
0: श्रीनिवास जी,
1: आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है. फ्रेंडशिप डे चल रही है
0: जी
1: तो उसके सिलसिले में मैं तो आई विल लैश अप टू दी 101.9 चैनल मैडम, क्योंकि आप कभी भी दी रीसेंट व्हाट एवर दी रीसेंट सिचुएशन विल बी देयर एंड दैट ओनली यू विल टॉक दी यू विल टेक दी आई विल से हमारे साथ का रिलेशन पूछ रहे हैं.
0: जी बताइए.
1: तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड बहुत ही है, तो उसमें से सुभाष रेड्डी बोल के एक मेरा क्लासमेट थे एंड मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था. तो थिकेस्ट फ्रेंड कैन से. तो वो हमारे घर के लाइन में रहते थे. तो बचपन से नॉट इवन 1960 ऑनवर्ड्स टिल हिज डेथ वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स मैडम. तो कोरोना में चले गया तो उसके लिए हम बहुत ही उसका याददाश्त कभी भी लेते हैं. उसका नाम सुभाष जी. उसको भी दो लड़के हैं, मेरे को भी दो लड़के थे. तो उन्हें बहुत ही अच्छा था हमारा सिलसिला. हमारा उसके साथ इतना थिकेस्ट फ्रेंडशिप था. उसके घर में कुछ हुआ तो हम उसके घर को जाते थे. मेरे को कुछ हुआ तो उन्हें आता था. मेरे इवन व्हेन आई गॉट बाईपास सर्जरी आल्सो ही वाज अरे वो नक्कोरे तू जा रहे वो तो अरे क्या होता रे क्या एक दो घंटे तेरे साथ बीतन. दैट फेलो वर्किंग एज एडवोकेट. सो मेरे को वही मारता था अरे तेरे को नॉलेज है रे कर रहे तू भी कर रहे. 5 ईयर्स का कोर्स कर रहे ग्रेजुएशन नहीं करा तो नहीं करा 5 ईयर्स का कोर्स करके 5 साल का है तो भी कर लेना ले बोल के मेरे को कभी भी बोलता था. तो ऑफकोर्स आफ्टर दी सिचुएशन ऑफ दी कोरोना ही वॉज वेंट ऑफ. तो हम कभी उसका भूल नहीं कर उसका भूलते नहीं उसका जो वॉट एवर हिज प्रेजेंटेशन वॉज देयर विथ मी सो आई कैन नॉट फॉरगेट इन माई लाइफ. उसके उतना अच्छा दोस्त कोई भी नहीं था कोई भी नहीं रहेगा भी मेरे ख्याल से. तो बहुत ही सारे फ्रेंड्स है बट इसका कोई भी उसका ये नहीं कर सकता पूरा नहीं कर सकता.
0: थैंक यू श्रीनिवास सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
1: थैंक यू वेरी मच.

0: यस तो हमारे अगले कॉलर शेरकान जी लाइन पर है। शेरकान जी, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैडम। गुड आफ्टरनून, आदाब। सभी
0: गुड
1: सुनने वाले भाई
0: आफ्टरनून।
1: बहनों दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब।
0: जी
1: अल्लाह
0: जी
1: सभी को खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे हमेशा, बस
0: जी
1: दुआ है
0: बताइए,
1: मेरी जी मैडम।
0: आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ एक मेमोरी शेयर कीजिए सर।
1: मैडम मेरे बेस्ट फ्रेंड बचपन के जो थे, मेरे साथ जो खेला करते थे, जो मैं ब्लाइंड होने के बाद जो मुझसे मुझसे जो दोस्ती करे आके, वो दोस्त मेरे ऐसे ऐसे टाइमों में काम आए और ऐसी मेरा साथ निभाए कि मतलब मैं बयान भी नहीं कर सकता। एक नहीं कई मेमोरी है, और जिससे भी मेरी दोस्ती होती है बचपन में हो या अभी हो, जिससे भी होती है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, और मैं दिल से मेरा दिल से अल्लाह वाला दुआ वाला रिश्ता जुड़ जाता है। और मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे काम में आएगा तो मैं इसको ये करूंगा, वो एक बार भी मेरे काम में आ गया तो मैं उसको हमेशा दुआओं में याद रखता हूँ। और
0: अच्छा
1: दोस्ती निभाने का नाम है, दोस्त सिर्फ जान पहचान कर लिए, हाँ जान पहचान बहुत होती है लेकिन जो
0: जी
1: दिल को छू जाता है वो
0: जी
1: दोस्त बन जाता है, और जो बिना लालच के बिना मतलब के किसी के काम में आ जाता है, यानी अपने एक टाइम में भी एक बार भी काम में आ गया तो वो हमेशा के लिए दोस्त रहना चाहिए, और
0: सही
1: अच्छे
0: है।
1: से निभाना भी चाहिए दोस्ती को। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों के नाम लूंगा तो वक्त नहीं कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं सभी से दोस्ती दिल से दोस्ती रखता हूँ और निभाने की कोशिश में रहता हूँ हमेशा। जो
0: वंडरफुल
1: कच्चे
0: सर।
1: थे वो छूट गए, टूट गए, जो उनकी दिल से थी ही नहीं, गलतफहमी की वजह से टूट गए वो, और कुछ एटीट्यूड की वजह से टूट गए, लेकिन जिनके भी साथ मैं रखता हूँ तो मैं ना कोई एटीट्यूड रखता हूँ अपने अंदर, ना कोई लालच ना कोई मतलब रखता हूँ, मैं अल्लाह से ही मांगता हूँ, और इसीलिए मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं।
0: वाह, बहुत अच्छा है सर। थैंक यू शेरकान जी,
1: जी
0: थैंक यू
1: शुक्रिया
0: फॉर सो मच फॉर कॉलिंग।
1: मैडम, थैंक यू।
0: दैट वॉज शेरकान जी विथ स्टोरीज एंड इंसिडेंट्स विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी FM रेनबो 101.3।

0: Yes, we have another caller online. Good afternoon, Ashok ji. Good afternoon, Ashok ji.
1: नमस्कार मैडम जी, आपको भी हमारा सागर सागर प्रणाम।
0: जी.
1: जो आपके हम आपने जो टॉपिक रखी है ना, हमें बहुत पसंद आई है। दोस्ती फ्रेंडशिप तो हो गई हमारी, आपके रेलवे स्टेशन से हमारे दोस्त मिले हैं आदि जनाब इकबाल भाई, जो
0: जी.
1: हमारे इकबाल भाई खास में से खास दोस्त बन गए हैं। ये
0: वाओ.
1: आपके रेनबो हैदराबाद रेलवे स्टेशन से जो मुलाकात हुई, आज तक हम उनके साथ निभा भी रहे हैं और ऐसे ही सेहतमंद रखे सबको, जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन जो भी है, यानी ये सब हमारे फ्रेंडशिप में दोस्त है हमारे हकीकत में।
0: वाओ.
1: लेकिन पहला फर्ज तो हम अपने माता पिता को देना चाहिए कि जो हमें आज दुनिया में हमें इस काबिल रखा और हमें दुनिया में परिचय दिया कि हम इनकी औलाद है।
0: जी जी बताइए. ओके, सो दैट्स अशोक सर ऑनलाइन. एंड यस, स्टेट इंडो आकाशवाणी FM रेनबो 101.9.

स्कॉटलैंड में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जांबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली, तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने। लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादो गावित ने पुरुषों की

0: 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधरों ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है, लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खास तौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइया। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
0: त्रिदीप, शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे, जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में, भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल। अगर आप टोटल मेडल से देखें, जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
1: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड हैं उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते, क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन 3 स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिम्नास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन 3 खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो भारत नहीं देखता हूं जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर 4 पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूं जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहां पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरेन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है, अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट जो ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया। खैर, पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स.
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ

0: पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
1: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जैवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है, और अब तो इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया है कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे। क्योंकि देखिए, अब जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूं, और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिम्नास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये 3 गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
0: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया, जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों की साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूं, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखें तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटा, नरेंद्र वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल लाला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया बॉक्सिंग के बाउट ही ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया, और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ 4th।
0: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी हैं वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि ये प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है?
1: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग, उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स डोमिनेट करेंगे। क्योंकि फीमेल, चाहे आप वेट लिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु है, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी, उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं। वेट लिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है, और उनका जो कन्वर्शन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं, और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाओ, मैं जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू अवर मेल कंपेटिटर्स।
0: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है, क्योंकि

0: तारीफ उनकी बनती है।
1: एकदम डेफिनेटली, जैसे कि बर्मिंगम गेम्स में तेजस्विन सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में, बट डेकाथलॉन को जैसे एथलेटिक्स का बोलते हैं मास्टर इवेंट, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो दिन कम्पीट करने पड़ते हैं और 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तेजस्विन जो हालांकि इन द लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने अपना फोकस हाई जंप से थोड़ा डिकैथलॉन में लाया है, जिसके तहत उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाए हैं, और डिकैथलॉन में इस बार वो पहले इंडियन बने हैं जो डिकैथलॉन में उन्होंने मेडल लाया है, और उसके बावजूद वो पहले इंडियन भी बने हैं जो 2 डिफरेंट इवेंट में उन्होंने मेडल जीता है। तो अगर आप तेजस्विन की बात बोले, तेजस्विन को मैंने बहुत करीबी से कैंप में भी देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ट्रेन करते हैं, दिल्ली का लड़का है, बट वो लड़का लेकिन बहुत एजुकेटेड है, वो उसको पता है कि एक एथलीट को अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, कब उसको पीक करना चाहिए, कब वो ऑफ सीजन होता है। तो ऐसे स्मार्ट एथलीट अगर और आते रहेंगे तो हमारी ऐसे मेडल टैली बढ़ती ही रहेंगी
0: जी। और महावीर, पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार कमाल कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया, जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता
2: है? ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें कोई एक स्पोर्ट जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, एक गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था, 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17-19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ, और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है, अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200 400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की ही कहानी मैं बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए, और उस लड़की ने उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बी 10.71, हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है
0: बिल्कुल,
2: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस किया, और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो अमेजिंग, जैसे यूसेन बोल्ट की, इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर, दिलीप ने भी बहुत स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5-5.5 सेकंड में खत्म किया। और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती, शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ, पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी 2 बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है, देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतने आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ, बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है, हमारे दोनों फौजी जो है जुयाल और सुमन राणा दोनों मेडलिस्ट है, और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेस में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपकी कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए, और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
0: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
2: पूरा, और सरकार का इसमें पूरा, मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है और एक नहीं 2 बार कराया है, और मैं सुनने में आ रहा हूं कि जल्दी 3rd edition भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खिंचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा। वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाती है, चाहे वो टॉप

0: सो वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं, तो हमारे पैरा एथलीट्स को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, ACTC में उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना कि नॉर्मल बॉडी का है. तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में.
1: जी, और प्रदीप, कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके, इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
2: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे 2 मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट्स में हमारे मेडल्स थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमारे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई। बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वॉज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014, उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले एशियन गेम्स में वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल है, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहां 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से एशियन गेम्स में हमने कभी वेट लिफ्टिंग पे मेडल लाया ही नहीं है। हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं लेकिन एशियन में नहीं ले पाए। सो एवरी शू डजंट फिट एवरीवन, व्हाट आई वुड लव टू से। तो इवेंट्स अगर, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो रही है, गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ भी बैठेंगे ताकि इनकी प्लान डिवाइस कर पाए कि कैसा एक्सपोजर चाहिए, या कोई इनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहिए, कोचेस चाहिए, जिसके तहत ये इंप्रूवमेंट इन सारे डिसिप्लिन्स में जहां हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इंप्रूव कर पाए।
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है, खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है, अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी, और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
0: नहीं, मौका तो होगा ही, हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी हुए होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में, इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से या विश्वास है कि गुजरात में आ वक्ते जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे, और मैंने देखा हर सांगी जी वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, पीटी उषा जी वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है इन राष्ट्रमंडल खेलों में। हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है, और उसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल, मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें।
2: जी, और जैसे महावीर जी ने कहा है, और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेहजबानी कर रहे हैं, जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन्स में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे। अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेहजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकेंड आए, वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकेंड से टॉप में आए।
1: जी, तो एक सवाल यहाँ तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
2: उम्मीद तो बहुत है, सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है, जैसे स्कीम जहां टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती हैं ACTC के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहां खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर्ड लगता है, और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे।
1: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता है?
0: नहीं, तब तक एलोकेट हो जाएंगे इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है, और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया है, पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखाए, हमने करके

0: लिखा है, तो बाय द टाइम 2030 होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए।
1: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे। तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया। इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है। हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं। खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.

दोस्तों, आज के नैरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे सबसे पहले हर्फ ताबिंद, तहरीर होगी मोहतरमा इशरत फातिमा की।

सादगी और इनकसारी खूबसूरत जिंदगी और बेहतर माशरे की कुंजी। सादगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा होने के बावजूद पेवन लगे कपड़े पहनते थे और जैतून के तेल और रोटी जैसे सादा खाने खाते थे। इनकसारी। वो रातों

मजबूत बनाता है। जब हम सोच समझ कर जीते हैं और दूसरों की इज्जत करते हैं, तो एक खूबसूरत और मकसद वाली जिंदगी हासिल करते हैं। जैसा कि लियोनार्डो डा उंची ने कहा, सादगी सबसे आला जहानत है। आइए हम सब इस रास्ते पर चलें जो एक बेहतर जिंदगी और अच्छे माशरे की तरफ ले जाए।

आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फिल्म अनारकली से लिया गया गीत। दोस्तों, मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत एहसास है जो इंसान को खुद से बढ़कर किसी और के लिए जीना सिखाता है। जब दिल किसी की चाहत में ढल जाए तो जिंदगी के हर रंग में एक नई रोशनी उतर आती है। सच्ची मोहब्बत न सिर्फ खुशियाँ बांटती है बल्कि ईसार, वफा और कुर्बानी का दर्स भी देती है। इसी लाजवाल जज्बाए मोहब्बत को अपने दिलनशीन बोलों और मुद्धर धुनों में समोए हुए हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हिंदी फिल्मी मौसीकी का एक ऐसा शाहकार जो आज भी दिलों को इसी तरह छू लेता है जैसे पहले अपनी समात में। तो आइए खामोश से दिल की धड़कनों को सुनिए और महवियत के साथ समात फरमाइए। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया।

दोस्तों आइए आप सुनते हैं फिल्म दो कलियां से लिया गया गीत। साथियों, रिश्तों की खूबसूरती मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे को समझने में है। लेकिन कभी कभी एक खामोशी, एक नाराजगी या एक कफा सी नजर भी दिल में बेशुमार सवाल छोड़ जाती है। मोहब्बत में शिकवे भी होते हैं, गिले भी, मगर इन्हीं में चाहत की मिठास भी छुपी होती है। अब हम आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं एक ऐसा लाजवाब नगमा जिसके बोल मोहब्बत की इसी नाजिक कैफियत को नहायत खूबसूरती से बयान करते हैं। हर लफ्ज़ दिल से निकलता है और सीधा दिल तक पहुंच जाता है। आइए महसूस कीजिए मोहब्बत की इस दिलकश गुफ्तगू को और समात फरमाइए यह खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्तों से। साथी, मोहब्बत की अपनी एक दिलकश दुनिया होती है, जहां कभी एक मुस्कुराहट बहार बन जाती है तो कभी एक नज़र पूरी कायनात को बदल देती है। जब महबूब सामने हो तो यूं महसूस होता है जैसे दुनिया की हर रौनक उसके हुस्न के आगे मान पड़ गई हो।

फिल्म आशा का गीत अभी आपने सुना। दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जो कि पेश किया जाता है रोज़ाना शब 9:30 बजे से 11 बजे शब तक, जिसमें अदबी तहजीबी सकाफती प्रोग्राम के साथ साथ सेहत से मुतालिक बातें आपको बताई जाती है, साथ ही मुख्तलिफ शख्सियतों से इंटरव्यू के साथ साथ डॉक्टर माइक पर सिलसिले में डॉक्टर से की गई बातचीत भी आपको सुनवाई जाती है। तो आइए आज के नरंग प्रोग्राम में, इस वक्त सिलसिला जारी है गीत सुरेले गाता जा का। इस सुरेले गीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं फिल्म गाइड से लिए गए गीत। सामाइन, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो खुद तो बिछड़ जाते हैं, मगर उनकी यादें नगमों की सूरत हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहती हैं। वक्त बदलता है, मौसम बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर दौर में दिल की धड़कन बनकर

फिल्म अभिलाषा से लिया गया गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनोखी अदा से। सामान्य क्रम, जिंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। कभी मंजिल आसानी से मिल जाती है और कभी रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे बिछे होते हैं, मगर हौसला मंद लोग शिकायत नहीं करते बल्कि उन्हीं कांटों से जीना

फिल्म कभी कभी से लिया गया गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी गीत पर दोस्तों पुराने फिल्मी गीतों के कई क्रम गीत सुरेले गाता जा अब खत्म होता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। आइए नैरंग के आखिर में सुनते हैं पयाम शब जैदी की जबानी।

और क्या था बेचने के लिए अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। ये शेर जिंदगी की तल्ख हकीकतों, कुर्बानियों और मजबूरियों की अक्कासी करता है। जब पास बेचने के लिए कुछ ना हो तो अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश और अपनी आरजुएं ही कुर्बान कर दें। ये उन लोगों की दास्तान है जो हालात के हाथों अपने दिल के अरमानों को तर्क करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज का पैगाम ये है कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने ख्वाबों की कदर करना भी ज़रूरी है। वक्ती फ़ायदे या दबाव के तहत अपने तमाम मकासिद और उम्मीदों को कुर्बान कर देना दानिशमंदी नहीं, ख्वाब ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अपने ख्वाबों और मकासिद की हिफाजत करो, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी का सरमाया है। हालात से समझौता ज़रूर करो, मगर अपने हौसले और उम्मीदों को मुकम्मल तौर पर फरोख्त न करो। ज़रूरत इंसान से बहुत सी कुर्बानियाँ मांगती हैं, लेकिन कामयाब वही है जो मुश्किलात के बावजूद अपने ख्वाबों की रोशनी को बुझने न दे। अगर कुछ ख्वाब कुर्बान भी करने पड़ जाएं, तो नए ख्वाब देखने का हौसला ज़िंदा रखो।

दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम आन नए रंग में कल हम आपके लिए लाएंगे सबसे पहले हर्फ़े ताबिंदा, बेदारिये कायनात सिलसिले में साइंसी तकरीर, गीत सुरेले गाता जा के तहत पुराने फिल्मी गीत, और आखिर में पयामे शबा।

0: ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೇ 101.9 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಚಂದಿ ಲಮೋ ಮೇ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಸಮಾಚಾರ ರಿಲೇ ಕಿಯೇ ಜಾಯೆಂಗೆ।
1: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatki with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली शरद जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: धन्यवाद प्राची धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां
0: थैंक यू प्राची Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
1: और श्रोताओं आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे द सेंसेक्स रोज 544 पॉइंट्स और 0.7% टू क्लोज एट 78,639 The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2% टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इंफोसिस में 3.5% की बढ़ोतरी हुई वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2% भारतीय एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई
0: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%, services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6%

0: and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined, and shares of 206 companies remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 34 पैसे पर बंद हुआ. शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज के परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है निवेशकों को, खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था. 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब वहां जाता था. तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है
1: जी,
2: मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी. तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीग अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है. मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी. तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है. इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया. तो आई थिंक अभी भी फूक फूक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है.
0: Of course, we will continue with this discussion, Sharadji, but before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
1: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं. तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए.
0: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट. इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%. इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%. डू यू थिंक इट हैज, एंड इन फैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जंप्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे. So is it something to do with the new, that rule that has come out regarding the closure of a business? If you can just explain to our listeners.
2: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination, which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together, so that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down, so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes, so because this was the first day,
0: happened only on the NSE.
2: Only on the NSE.
0: Yes.
2: So because this was the first day, Anubha, so what has happened is that, the traders were excited. They wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute splurges which happened today.
1: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji, karikram.
3: Hello.
1: Ji. इदरीश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछें.
3: नमस्कार.
1: नमस्कार.
3: मैं बैंक में गया था, वो नंबर लिंक करवाने खाते से.
2: हाँ जी.
3: तो मैडम का अंगूठा लगा हुआ है, तो कह रहे हैं ये नहीं, नंबर लिंक नहीं हो.

0: इदरीस जी, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए।
1: अच्छा
0: जी हाँ हाँ, अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं।
1: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था।
0: अच्छा जी, ओके।
2: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है, आपकी मतलब आपकी वाइफ
1: मैडम का खाता है, उनका अंगूठा लगा हुआ है, तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा।
2: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा, इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा।
0: जी
1: हाँ जी हाँ।
2: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था, शायद आपका
1: हाँ,
2: नहीं होगा।
1: वाइफ का है और उन्हीं का।
2: नहीं, नंबर तो उनको अगर अगर थम इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल। तो इसमें इदरीस जी, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें। आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से, तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें। तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए, क्योंकि खाली थम इंप्रेशन होने का यह मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा। क्योंकि इवन यू नो, आपको मैं अनुभा और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता
0: जी,
2: है
0: जी।
2: और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है। तो इसलिए देयर इज नो रीजन, मुझे लग रहा है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है इदरीस जी, आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी आजकल।
0: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल, अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली। अनिल इज ऑनलाइन विद अस। अनिल, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: यस मैम
0: जी।
3: कोली साहब, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द एफएनओ पीएनएल टू बी सबमिटेड इन एंड अलोंग विद द रिटर्न।
2: श्योर।
3: व्हेन वी सबमिट वी टेक द नेट डेबिट एंड नेट क्रेडिट एज सेल्स।
2: या।
3: एंड देन टेक आउट द प्रॉफिट।
2: या।
3: इजंट इट?
2: या, एब्सोल्युटली।
3: सो बट द टर्नओवर इज it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
2: Yeah.
3: Right?
2: Yeah.
3: Only loss and profit is to be taken.
2: Absolutely. Absolutely, Anandji, you are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, to make our other listeners understand, with your permission, Anubha and Prachi, because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures, so the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on, and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
4: Jaipur se hamare saath Jitendra jud rahe hain. Jitendra ji, karyakram mein aapka abhinandan.
5: Thank you. Aap sir, ye jaise ICICI ka Nifty 50 ka
0: जितेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे। जी, आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से। जी,
4: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं अनुभव, हम आगे बढ़ते हैं।
0: जी,
4: रुक करते हैं एशिया के शेयर सूचकांकों की तरफ। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की।
0: शरद जी, आई लाइक टू यू नो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट हैज हैपेंड, दैट वेयर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंफर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग इंटरवेंशन टू हॉल्ट, एज प्राची जस्ट रेड, टू हॉल्ट द जापानीज करेंसी स्लाइड टू 40 ईयर्स लो। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली व्हेन यू नो टू कंट्रीज कम टुगेदर एंड डू दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन लाइक दिस?
2: वी नीड टू अंडरस्टैंड अनुभव दैट जापान इज अ वेरी क्लोज अलाय ऑफ द यूएस, एंड इट इज ट्रू दैट द जापानीज येन वाज कोलैप्सिंग, इट वाज फॉलिंग, इट वाज स्लाइडिंग लाइक एनीथिंग। ऑल्दो आई मस्ट पॉइंट आउट हियर दैट व्हेन अ करेंसी स्लाइड्स, बिकॉज जापान इज प्राइमरली एन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट, सो द एक्सपोर्टर्स वर गेनिंग, बट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक्स इन जापान, the currency was losing value. So US as a true ally came to the rescue, and they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But you know, for how long this will go on is a question mark, because if they sell too many dollars, you know, it will start impacting US dollar as a currency. But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event because we monitor forex currency management, you know, very, very closely. And it's a very interesting alliance.

0: alliance, you know. I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well. But because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time we're looking at something like this, or this is a practice, you know, which has been around?
0: No, it has happened earlier as well. Okay. Because there were a few years ago when Japanese yen, in fact, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has devaluated its yuan in the past. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
2: Mumbai se hamare saath is beech Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochi.
3: Hello, good evening, madam. Mera sawal hai ki pharma sector ke bare mein 100% duty lagane ki baat suni thi
0: ji,
3: to wo pharma sector mein investment karna kaisa uchit rahega kya? वैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 26 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था, तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया? उसके लिए प्रीमैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं?
0: रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं. देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं. तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती. आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है. दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही. आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी है, यहां हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं. आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया. अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है. आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता. ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहां लॉक इन होते हैं, जहां पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते. तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे.
1: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी उससे जब ये निकालेंगे, तो शरद जी, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा.
0: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती होगी,
1: कटौती भी होगी,
0: उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं, क्योंकि प्री मेच्योर माना जाता है. पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे, या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए.
2: देखते हैं अगला सवाल क्या है. भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: नमस्ते शरद कॉलेज जी. सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है, क्योंकि ये एफआईआई का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
0: जी.
4: तो ये अब डू यू थिंक की अब ये ट्रंप की और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा उनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट, and this will be the last time we will be seeing these levels and we should see higher levels. kya aapki nifty ke bare mein guess hai for next say 2 years before trump retires? thank you sir.
0: नहीं, ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं. ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में, ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं. ये अमेरिका में दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है. सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही है, तो वहां उसके बाद अगर मान लीजिए मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है, तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते. पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया. आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी. देखिए, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया, कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा, तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर. मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं, कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती है. तो शंकर, उम्मीद तो यही करते हैं.

0: कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बढ़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव ये कहता है अनुभव कि ये जो है अभी इस पे पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
1: थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मार्केट मंत्रा को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ जैसे ईरान और अमेरिका का।
1: जी, सवाल पूछिए प्लीज।
2: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध विराम लग रहा है, ये कब तक क्लियर होगा?
0: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है, कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी, दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है। अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, आप उस पर जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूँ।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
3: Hi, good evening to all of you.
1: Good evening. Please.
3: Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में, और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनीवेज, तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज ऑफ कोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
0: अगर मैं ठीक समझ
3: एस में दिखा रहा था इसलिए मैं वो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे।
0: शहनाज देखिए, ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। अब मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपने रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है, तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहां चला गया, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज, जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं, आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार रहिए।
1: Yes, let's move on to the next story. India's manufacturing sector continued to expand in July, although the pace of growth slowed to its weakest level in nearly 5 years. According to the HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI released today, the seasonally adjusted manufacturing PMI eased to 53.5 in July from 54.2 in June, its lowest reading since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases, and employment moderated during the month. While domestic demand softened, export orders gained momentum, with firms reporting stronger sales to markets including Canada, Egypt, Indonesia, Kenya, Nepal, South Africa, Thailand, and the UAE. Sharaji, quick comment on... I will come to you for a comment on this PMI reading that has come in today. Yeah. But before that, let's take the next call coming in from Noida. Amit is online with us. Amit, welcome to the program. Please ask your question.
4: Yeah. Thank you, Market Mantra team. And my question is to Mr. Sharad Kohli ji.
0: Yeah.
4: Good evening, sir.
0: Good evening.
4: Sir, I am a regular investor in mutual fund. When I say regular, I have done the investment through an investment advisor.
0: Yeah.
4: However, after, you know, exploring the market, I am now planning to move to direct investment.
0: Okay.
4: So what I have done, I have...

11:40 और 55 सेकेंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत, आपके संग है अर्पना। गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं देवानंद टीना मुनीम राखी के अभिनय से भरी हुई फिल्म की। फिल्म का नाम है लूट मार और गीत जो आप सुनेंगे उसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, आशा है आशा भोसले की। एक बार फिर से बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म हीरो से अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत आपको सुनाओ उससे पहले आपको बता दूं कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मनमीत। तो अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ है, एक बार फिर से संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी का, फिल्म का नाम है सरगम। और इसी के साथ 11:55 हो चुके हैं, गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में

0: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अंक तालिका में 4th स्थान पर लाकर देश के खिलाड़ियों ने गौरवशाली इतिहास रचा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अभूतपूर्व सफलता और भी बड़ी हो गई है क्योंकि भारत अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said, the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its

वक्त हुआ है 12:10, वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें फासले तो बढ़ जाते हैं मगर एहसास कभी दूर नहीं होते। आप यूं फासलों से गुजरते रहे और हम हर धड़कन में आपका नाम सुनते रहे। दूरी ने

रजिया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। कभी कभी दिल ऐसे ही सवाल पूछता है जिनका जवाब शब्दों में नहीं सिर्फ एहसासों में मिलता है। मोहब्बत भी शायद ऐसा ही एक सफ़र है जहां मंजिल से ज़्यादा तलाश मायने रखती है। ऐ दिले नादां, आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हर उस दिल की आवाज है जो किसी अनजानी कमी, किसी अधूरे ख्वाब और किसी अनदेखी मंजिल की तलाश में भटकता रहता है।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फिल्म अलग अलग से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जब किसी का नाम ही दुआ बन जाए, मुस्कुराहट बन जाए और हर सांस के साथ चलने लगे, तब शायद यही एहसास जन्म लेता है कि तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं।

तेरी मेहरबानियाँ फिल्म का गाना आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। एस एच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत का सबसे दिलचस्प एहसास शायद इंतज़ार ही है, कभी किसी के आने का, कभी उसकी एक मुस्कान का, कभी उसके एक लफ्ज़ का। और अजीब बात ये है कि कभी कभी वो शख्स हमारे बिल्कुल पास होता है, फिर भी दिल को उसके इंतजार से फुर्सत ही नहीं मिलती।

प्रेम रोग फिल्म का गाना आपने सुना, सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा अमीर गजलबाश ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारे।

लाल ने। अजीब है ना, दिल को सब मालूम होता है। उसे ये भी पता होता है कि कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, फिर भी वो उन्हीं राहों पर नजरें बिछाए बैठा रहता है।

प्यार झुकता नहीं फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिय विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि की भागीदारी की उम्मीद है। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने सूचित किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनमें शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमाली गढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

हमीर हट फिल्म का गाना आपने सुना, मुबारक बेगम की आवाज में। सरस्वती कुमार दीपक ने इसे लिखा और संगीत दिया सन्मुख बाबू उपाध्याय ने। गीत सुहाने हो तो हर लम्हा कुछ और ही हसीन लगने लगता है, कुछ धुने होठों पर मुस्कान बनकर ठहर जाती हैं, तो कुछ दिल की गहराइयों में उतरकर अनकहे एहसास जगा देती हैं।

फरियाद फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया स्नेहल भाटकर ने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लफ्जों में ढालने की हिम्मत नहीं होती। हम तो बस अपने जज्बातों को दिल में संजोए बैठे थे, मगर वक्त ने हमारी खामोशी भी पढ़ ली।

शगुन फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कुछ रास्ते कांटों से भरे होते हैं, कुछ सफ़र तन्हा होते हैं, लेकिन इन्हीं सफ़र में हौसले की असली पहचान भी मिलती है। दर्द अगर ज़िंदगी का हिस्सा है तो मुस्कुराने की वजह भी कहीं ना कहीं इसी जिंदगी में छिपी है।

बाजी फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इश्क की दुनिया में कुछ बातें जिद से नहीं प्यार से मनवाई जाती हैं। कभी एक मासूम सी गुजारिश, कभी नाज से कही गई बात, तो कभी मोहब्बत से भरी एक पुकार।

शर्त फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

हुआ है 1:30 और ठीक 52 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फिल्म जोगन का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया बुल्लो सी रानी ने।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और आशा की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। इस गाने को बजाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अब हमें छोड़कर जाने वाले हैं, यानी कि नींद की गिरफ्त में जाने वाले हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि अभी बहुत से प्यारे प्यारे गाने अभी बाकी हैं, तो इसलिए अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।

0: सुजाता फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जब दिल किसी का हो जाता है तो आंखों में उम्मीद के छोटे छोटे दिए हर पल रोशन रहते हैं। हर आहट पर लगता है शायद वही आ रहा है। हर शाम उसकी याद का उजाला अपने साथ ले आती है।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त और रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो खामोशी की चादर ओढ़कर आती है, जहाँ न कोई इजहार होता है न कोई वादा, बस दो धड़कनें एक दूसरे की आहट पहचान लेती हैं।

साधना फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। दिल बड़ा अजीब मुसाफिर है, हर बार ठोकर खाने के बाद भी फिर किसी नई उम्मीद की राह पकड़ लेता है। हम उसे समझाते रहते हैं कि जरा संभल कर चल, मगर दिल है कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है।

बादल फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज

पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहाँ 380 गाँव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 5 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

दाग फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दिल की हर बात शब्दों में नहीं ढलती, कुछ एहसास नजरों की खामोशी में पलते हैं, कुछ धड़कनों की लय में छिपे रहते हैं और कुछ बरसों तक बस एक मुस्कान के पीछे अपना ठिकाना बना लेते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। मोहब्बत की सबसे प्यारी शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं नजरों से होती है। एक पल की नजर, एक मासूम सी मुस्कान और दिल को खबर भी नहीं होती कि कब एहसासों का सिलसिला शुरू हो गया।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया। लक्ष्मी

कांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत का असली मतलब साथ निभाना है, सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि हर इम्तिहान, हर दूरी और हर मुश्किल घड़ी में भी। जो रिश्ता भरोसे की नींव पर खड़ा हो उसे समय भी कमजोर नहीं कर पाता।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। नजरों की भी अपनी एक जुबान होती है, कुछ बातें बिना कहे ही दिल तक पहुंच जाती हैं। कभी एक मासूम सी नजर मुस्कान बन जाती है तो कभी वही नजर दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, और जब कोई यूं ही ठहर कर देख ले तो दिल अचानक ही गुनगुना उठता है।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। मोहब्बत की मासूमियत, दिल की बेकरारी और किसी एक चेहरे में पूरी कायनात को देख लेने का खूबसूरत एहसास।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म का आपने गीत सुना रफी और लता की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कितना प्यारा सा चुलबुला और दिल को छू लेने वाला नगमा, जिसमें छेड़छाड़ भी है, अपनापन भी और इजहारे मोहब्बत की मीठी सी आहट भी।

आवाज में। बारिश की बूंदों में एक अजीब सी जादूगरी होती है। ये सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोती बल्कि दिल के उन एहसासों को भी जगा देती है जो अक्सर लफ्जों में नहीं ढल पाते।

शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 2:56 और ठीक 28 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने

प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमराही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कई बार हम किसी को कुछ सीरियसली कहना चाहते हैं पर सामने वाला उसे हंसी हंसी में ही ले जाता है। बात हंसी में उठी थी पर असर गहरा कर गई। बात हंसी में उठी थी पर असर गहरा कर गई। उनकी एक मुस्कान हमारे दिल में जगह कर गई। अब इसे इत्तफाक कहें या उनकी अदा, जो हंसी हंसी में ही जिंदगी खुशनुमा कर गई।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर बसा के देखो। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किनारों को जैसे लहरों की आस होती है, किनारों को जैसे लहरों की आस होती है, अंधेरी रातों को जैसे दिए की तलाश होती है। प्यार तो बहुत देखा है इस दुनिया में हमने, पर तेरे प्यार में जो बात है वो सबसे खास होती है।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से ये गीत आपने अभी सुना। कभी लफ्जों में बयां हो तो वो बात क्या, कभी लफ्जों में बयां हो तो वो बात क्या, अगर प्यार नजरों से ना छलके तो वो रात क्या। जो खामोशी को भी चुपचाप समझ ले उस सच्चे हमसफर के आगे फिर कायनात क्या।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में फिल्म साथी से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।

0: Ana.
1: दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे के होते हैं तो वो सिर्फ प्यार ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खाते हैं। और वादा, वादा तो मोहब्बत की वो डोर है जो दो रूहों को हमेशा के लिए बांध देती है। आइए सुनते हैं हाथ की सफाई फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लीडर से अभी आपने गीत सुना। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, पलकों के बंद होते ही हर आरजू करीब होती है। यूं तो हर रंग से सजी है जिंदगी की राहें, पर तेरे संग देखे सपनों की बात ही अलग होती है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी ये गीत आपने सुना। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि कल को जुदाई सहना मुश्किल हो जाए। ये दिल तो नादान है, समझता नहीं कुछ, कहीं तेरी आदत ही मेरी कमजोरी ना बन जाए।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और बातिश, सुधा मल्होत्रा की आवाज में, बरसात की रात से।

दोस्तों, अब जाने का समय नज़दीक आ गया है और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वो विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25.50 रुपये प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22

0: रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 3.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहला चरण हॉर्मूज जल डमरू मध्य को खोलना है जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्त्रीकरण का होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concerns over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha yesterday passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Banjalpur in Gujarat and Congress has kept Tatiya constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival, Bhikabhai Rabari of the Congress, with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in by-poll. Voting for the by-polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in yesterday's 3 assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The central government has revised the special additional excise duty on exports of

सुबह के 4:11 और 15 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और एक विश्वास भी होता है कि जिंदगी और सुहानी और आनंदमयी हो जाएगी।

येसुदास की आवाज़ में फिल्म अय्याज से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो काम जल्दी भी हो जाता है और उसे करने में बहुत आनंद भी आता है, और आपने देखा होगा कि उसमें थकान भी नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते रहिए। आइए सुनते हैं नया दौर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, ये जिंदगी भी एक पहेली ही है जिसका उत्तर हमें जल्दी से समझ ही नहीं आता। कभी ये हमें हंसाती है और कभी रुलाती है, पर फिर भी हिम्मत रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बढ़िया से बीत जाए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म आनंद से ये गीत।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, चांदनी फिल्म से सुरेश वाडेकर और अनुपमा देश पांडे की आवाज़ में।

दोस्तों, आजकल के माहौल में अब ऐसा लगता है कि जैसे सीधे साधे इंसानों का इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। उनको तो सब मूर्ख बनाकर आगे चल पड़ते हैं। पर दोस्तों, देखा जाए तो जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है वो उन्हीं लोगों से ही है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तू नहीं और सही से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, गाना आए या ना आए पर फिर भी गाने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। अभी आपने गीत सुना पति पत्नी और वो फिल्म से, आशा भोसले सुषमा श्रेष्ठा और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। दोस्तों, आजकल के समय में पैसा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, पर ये ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हम पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही अपनों से दूर होते चले जाएंगे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लावारिस से ये गीत।

0: मन्ना डे की आवाज़ में दिल की राहें फिल्म से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब सुरों की वर्णमाला से प्यार का नगमा बनता है तो दिल झूम उठता है। आइए सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री के इस सुरीले गीत के साथ सुर में सुर मिलाते हुए सारे गामा पा।
1: हसो मत, बोलो।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अभिनेत्री से ये गीत आपने सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौतन से।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजरपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य की 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने उम्मीद व्यक्त की कि होर्मुज जलडम्बर मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर कर

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक सुबह का समय ही ऐसा है जब हम शांतिपूर्वक भजन सिमरन कर सकते हैं, बाकी पूरा दिन तो भागदौड़ में ही बीत जाता है। तो आइए इस शांत माहौल में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है सुराज सिंह ने।

दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी हम फालतू की चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सूरज और चंदा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, किसी का साथ होना बहुत ही अच्छी बात है, पर किसी के साथ पर डिपेंड हो जाना वो गलत है। अगर कोई साथ नहीं भी है तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। संबंध फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पेइंग गेस्ट से।

दोस्तों, हमारी जिंदगी अपने ही परिवार के कार्यों में ही बीत जाती है। उसी में हम पूरा दिन लगा देते हैं। पर दोस्तों, जीना तो वो है जब हम दूसरे के लिए जीते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बादल से ये गीत।